0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्त जरुरी सूचना। झुमो बेला खेम्रिदे गरम औपतिरी जेउ बेला सुनौ फुरी कता अचुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज सम्भावना पाए। आउए गुने प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त ज सक्षम नागे वातावरण मिलेने लख्यता असर केने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानागे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सक्यने सुन नाखर नामे ल भे लागिने सज जिमी किमी लापरवाही सुन चाउसो खेलगेमा दुख
2: सामुदायिक बने होने अनुगमन दिने व्यवस्था
1: गेसो छानेला खोले चाउसी पोलिए हरिदे तरिम गाई गेजम हेके लैजु अब नजरे बनाए गेम गेजम हेके नलाए अरूले लाइके नाइए
2: वन जङ्गल सजुलिसियो घेन बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा चाउसो छिमी ने चाउसो सहिदेकी खेले
1: वन जङ्गल मेलाइ गेमाइए भेला दिने पाँच जना खरनाम लाएर मिलिदे बनाए चाना जन हेसे
2: बतास उचुलिजु बेला त हिजिमके कोटल मेकी सताङ्गिने हेनोखेम छिन्ने ने चाउसो गेसे
1: मेलाइ गिने निताई गे मने के बसिए सोनो अरूले मने के बसैया
2: के छ छामला पोयाल मेलाइ गिसन किने गे छटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय खबर दिए।
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा